जो जो पाथौ नेपाल सम्बन्ध सब पी खुद तसला थो पञ्चमी थो रेडियो नेपाल ख आने नादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। प्रतिनिधि सभा संविनियोजन विधेयक 2083 पारित चुगुदु। प्रतिनिधि सभा या मिगया बैठक अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले तया दिगु विनियोजन विधेयक 2083 या त पारित यामा दैगु प्रस्ताव बहुमत पारित यागु ख। मन्त्रालय गत सल सन् लङ्गु नेस या लिस सं विभागीय मन्त्री पिन्स लिस बिगु झोस सिधे धुने हुँ विनियोजन विधेयक पारित जुगु ख। थयानीय सभामुख डोल प्रसाद अर्याल विधेयक निगु निसे झिन छगु तक्क या दफाया त निर्णयार्थ न्यवया दिगु ख। अथियाना संसद संविनियोजन छ दथिया विशेषण तया दिगु खे खर्च कटौती प्रस्ताव सभाया बहुमत अस्वीकृति आगु ख। सभाया मेगु बैठक थौ प्रतिनिधि सभाया मेगु बैठक थौ छिन्छ त इलेक्ट्रोनिकु गोसादु। प्रतिनिधि सभाया मेगया बैठक विनियोजन विधेयक 2083 दथि जुगु छ तेके जुगु सहलसन प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह यथास लिस बिहादिस अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले पद व शक्तिया दुरुपयोग याना गैर कानुनी कथन सम्पत्ति मुङ्किएको प्रवृत्ति या त निरुत्साहित आएको पलसा नापा अस्थायी कथन या सम्पत्ति छानबिन आयोग 2083 निसुनाको कनादिगु दुसा पदाधिकारी तेगु सम्पत्ति दुवालेगु याना कानुनी कथन सम्पत्ति मुङ्कगु सी दुसा कारवाही या नितिन सरकार समक्ष सिफारिस आएगु जक कार्याधिकार दुगु धयादिगु दु। अध्ययना मन्त्री डाक्टर वागले सम्पत्ति छानबिन आयोग या गठन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थिए जाको संवैधानिक निकाय कार्य धिकार हस्तक्षेप मजुई गुण ध्वाथुका दिगुदु। अर्थमन्त्री डाक्टर वागले सरकार या सरकार नेपाली सेना या त सुकुम्बासी बस्ती डोजर छेला बस्ती चिकेको ज्याखे छुन थासे खटे मयानागु कनादिसे जोखिम जागु लागे दुपी सुकुम्बासी ते त सुरक्षित थासे यङ्केको झोले नेपाल प्रहरी स्थानीय तह नापा समन्वय स सुरक्षा प्रबन्ध औ सहजीकरण या नागु कनादिल। अथियाना निजी विद्यालय कार्य विशेषण लिसबिया अर्थमन्त्री डाक्टर वागले थाकुईको मजुक याना दीर्घकालीन हित नीति देय अर्थतन्त्र या त औपचारिकता आधुनिकीकरण यागु याना थोक कोचना यानागु कनादिगु ख। बैठक सांसद होंगु लिस बिहार दिशे गृहमंत्री सुदन गुरुंग आयागु सरकार भ्रष्टाचार दिखेगु नीति शून्य सहनशीलता या नीति कयागु तयादिगु दुसा वेक्ल गृह प्रशासन या त परम्परागत सुरक्षा निकाय संजक सीमित मयासे थुकी या त ढिसी लागु शान्ति विकास सुशासन औ समृद्धि अलि धंसा कथा निज्याकेगु सम्पर्क याना संकल्प याना निजाना चुनागु कनादिगु दु। अथियाना गृहमंत्री गुरुंग मनोतेसन छगुए परिचय एकीकृत कथ सेवा कागु फलसा नापा राष्ट्रिय परिचय पत्र या त सकल कथ या सार्वजनिक सेवा नापा पूर्ण कथा दुथ्या किगु कनादिगुदु। उगे बैठक शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल सरकार स्रोत या लिदंसा अतिकतम बजेट शिक्षा व खेलकुद लाग्या फ्यानागु ध्यादिगु दुस मन्त्री पोखरेल विद्यालय शिक्षा निसे डिजिटल शिक्षा लगानी या त सनागु शिक्षक या क्षमता उपकेगु नीति टेवा फ्यानागु कनादिगुदु। अध्ययना कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम संक्रमणकालीन न्याय नापाय आयोग निसो नेता सिफारिस समिति प्रक्रिया निजाकागु धयादिगु दुसा ताइल निसिल्य दया लिय दुगु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया त याक्न कोचा कि त सरकार आफला थ्या बिया तयागु आयोग निसोनेगु नीति सिफारिस समिति प्रक्रिया निजाकागु धयादिल। विज्ञान प्रविधि तथा नवपरिवर्तन मन्त्री महावीर पुन नवपरिवर्तन लाग्या लगानी याना देय अर्थतन्त्र भिङ्के फैगु धयादिगु दुसा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साना सरकार बहुवर्षीय बजेट प्रणाली या त थ्या बियागु धयादिगु दु। वेकलन सडक छाँका मनोते त सुरक्षित सुरक्षा या त मनुत्या ताना छ निनादेश वैकलन सडक झाँका व मनुत्यको सुरक्षा त ध्यान तया वैकु दिने देखिएको सडक सञ्जाल छ अन्डरग्राउन्ड पास ओभर पास फ्लाइओभर पास अनिवार्य यागु व यको झाँका जुइगु जिल्ला नापा सुहागु छगु लेन या सडक या त सोधो दुने निगु लेन या देखिएको ज्या धल दुगु धयादिगु दु। अध्ययना मन्त्री लम्सालाई यहाँ सोनिगय या त धु मध्येको सोनिगय देखेको नीति सडक सञ्जाल या त स्वदय ज्या धल कथा
कालो पत्र यागु वैगु स्वद दुने खुइङ्यागु प्रतिशत जनसङ्ख्या त बान्लागु तोनेगु ल ह्यागु योजना कथन ज्याना चुनागु धया दिल अध्ययन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ढिसी लागु विद्युत आपूर्ति मेरुदण्डा कथन दुगु प्रसारण लाइन सब स्टेसन तेता आफलन थ्या बिया बजेट फ्यानागु जानकारी बिया दिगु ख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रोपाय सचिवालय बैठक पार्टी विधान संशोधन याना केन्द्रीय समिति तब्याका सचिव ङेसम्म दुज देखिगु कोचिगु दु पार्टी सचिवालय बैठक या कोचिना सार्वजनिक याना दिसे महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी बैठके नेगु प्रदेश अधिवेशन या समीक्षा याना गु कनादिगु दु थोए असार 7 निसे 9 गते तक चितवने जुगु महाधिवेशन अथे सोदो प्रतिनिधि पिन्सम बोती काइगु रासो पान्धागुदु गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सूचना प्रभाव प्रणाली याता प्रविधि मैत्री देखु सेकीकृत विपद व्यवस्थापन याता प्रभावकारी देखे मागुली बिगुदु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व व्यवस्थापन प्राधिकरण हिग चङ्गु बैठक गृहमन्त्री गुरुङ मनसुना जागु विपद पूर्व तयारी राजमार्ग अवस्था हेल्पलाइन सेवा आपतकालीन प्रतिकार्य योजना स्वापुदुगु मन्त्रालय व सुरक्षा निकाय दथी प्रभावकारी समन्वय सूचना प्रवाह प्रणाली सेलाकेगु कनादिगुदु गृहमन्त्री गुरुङ विपद पूर्व तयारी खे मिसातेगु सुरक्षा याता थ्याबिया मनुतेगु सेवा व उद्धार व्यवस्थापन याता लिचो लाकेता सुरक्षा निकाय त्यता उजोबिया दिगु खसा उगे बैठके स्वापु तैपिसमा विपथे जागु ख याता सूचना प्रभाव व समाचार या प्रभावकारी सङ्कलन सम्प्रेषण जनचेतना उपकेगु नीति सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन तयारी अवस्थाकै दुगु नापान जानकारी बिया दिल सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा नापाचिना कम्पनी हुवावे एसिया प्रशान्त लागाया अध्यक्ष टेरी हे नेतृत्व प्रतिनिधि मण्डललाई नाप्लाना दिगुदु मन्त्रालय मिग जुग नाप्लाज्या अध्यक्ष टेरी हे नेपाल डिजिटल रूपान्तरण या महत्व जागु थासे दुगु नेथना दिसे थुकिया नीति हुवावे नापा मागु प्रविधि अनुभव स्रोत दुगुले सहकार्य याता एकागु कना दिगुदु कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी कानुन संशोधन याना राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड या त अझ भिङ्केगु आत्मनिर्भर देका किसान मैत्री नीति व ज्याचो हेगु कनादिगु ख यले बोर्डे यल खे दुगु बोर्डे हिग दुग्ध व्यवसाय नपाजुगु सहलसा मन्त्री चौधरी दुरिया उत्पादन लागत बजा या त सोया यी नाप्नापा मु निर्धारण यायगु दुरिया जोल ममिगु इले हे भुक्तानी ममिगु व्यवसाय याता मयाइपी इले हे भुक्तानी मयाइपी व्यवसाय याता कारवाही यागु पछि सरकार दुगु न वैकलम पछ बियादिगु दु सरकार राष्ट्रिय परिचय पत्र नापाया मनुतेसन डाउनलोड या मिले जुइकु सेवा न्याकगु दु राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग हिग परीक्षण या कथन थो सेवा उले जा यागु ख विभाग या राष्ट्रिय परिचय पत्र नापाया वेबसाइट मनुतेको फोटो वा अनलाइन भेरिफिकेसन क्युआर कोड नापाया परिचय पत्र कार्ड डाउनलोड या फैगु जुगु ख सरकार या शासकीय सुधार नापाया स्वच्छी कार्य सूची कथ बुदा नम्बर 2 सा विभाग या प्रणाली सा मनुतेको फोटो वा क्युआर कोड नापाया राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड नापाया मनुतेसन डाउनलोड याइगु प्रणाली देखेगु नेतना तगु दु राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर कापी मनुतेसन ना नेपाली वा अङ्ग्रेजी जन्ममिति वा नागरिकता जारी मिति दुथ्याका थगु कार्ड डाउनलोड या फैगु विभाग जानकारी बिगु ख रूपन्देही बुटवलसँग अभौतिक मुद्रा क्रिप्टो करेन्सी कारोबारे लावापी लावागु दोपसँग खुम चिन्या नागरिक तेता जोङ्गुदु प्रहरी जोपी मध्ये पी सोद दुमा हु गाङ पी ङ्याद दुमा ली सुआन हेई सुई खुद दुमा सुन हुई सुई ङ्याद दुमा छाओ क्यु चेन सुई छद दुमा सियाङ जिया सुन व पी ङ्याद दुमा ली बिन जुगु धागु दु अनुसन्धान या झोले उमिस बाइनान्स ओके एक्स इन टोकन पेटिएम मोबिक्विक व फोन पेल नापाया डिजिटल भुक्तानी हो क्रिप्टो करेन्सी एप्स व वेबसाइट पाखे अभौतिक मुद्रा कारोबार याना चोङ्गु नापाङ्गु अनुसन्धान पाखे सी दुगु प्रहरी या थापुदु आदेशम पिनी अबुख
लुआपुन हङ्के त अमेरिका इरान सम्झौता छेले धुङ्कानी अमेरिका इरान दथिया नौसैनिक नाकासँग नौसैनिक नाकाबन्दी चिकगुदु अमेरिकी सेन्टर कमान्ड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उजाँ कथा नाकाबन्दी नङ्कागु धागु खसा छु अमेरिकी युद्ध पोत धसा अजन चिकगु मधुनी सम्झौता लिपा इरान सर्वोच्च नेता मौजतबा खामेनी थप्न ब्याग्ला मतयागु जुसाना सम्झौता यात अनुमोदन यागु कनादिगुदु वेकन राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन इरानी जनता अधिकार रक्षा यागु आश्वासन बी धुङ्कानी प्रक्रिया निहेचकागु नेतना दिगु खामेनी ट्रम्प थिथि दबाब बोलङका सम्झौता याकगु दोपनापा बियादिगुदु सम्झौता होर्मुज जलमार्ग हान च्याकिगु इरान परमाणु लाभ मध्येकेगु बच व स्वस अर्ब डलरिया पुनर्निर्माण व आर्थिक विकास कोष पलिस्ता यागु विषय त दुत्या कगुदु अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी भान्स सम्झौता छेलाबुला वोगु मेगु प्राविधिक वार्ता स्विजरल्याण्ड जुई गुना ध्यादिगुदु तर अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद बिल क्याडिसिन सम्झौता या त आतक या हे बामलागु विदेशी नीति जुगु धासे कुङखिना दिगुदु धासा थुके इजरायली छु मन्त्री पिसन थो सम्झौता या त कया कुङखिना चङ्गुदु आकाशय जानकारी फिफा विश्वकप फुटबल 2026 थेन्देबेला कथा समूह चरण या निकगु राउन्ड या नापाङ्गु कासा चेक रिपब्लिकको दक्षिण अफ्रिका दतिया कासा छगु छगु बराबरी खे कोचागुदु अथियाना वङ्गुचाने जुगु कासा स्विजरल्याण्ड बोसनिया हर्जगोभिना या त 6-4-1 गोल अन्तरम बुकगु दुसा अथियाना क्यानाडा कतार या त 6-0 गोल अन्तरम बुकुसे बुकको दुसा अथेयाना मेक्सिको दक्षिण कोरिया या त 1-0 गोल बुका बिगुदु मौसमीय जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमालय पहाडी लगाया हो थासे वा नपाँच पपु कुहा वैगु सम्भावना कुबिगुदु कोशी प्रदेश तराई लगाया छुन थासे न वा वैगु सम्भावना कुबिगु धागुदु लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लगाया छुन थासे क्वागु फे वैगु व बागमती गण्डकी प्रदेश तराई लगाया छुन थासे न क्वागु फे वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थापुदु वङ्गु निपे घौस ये सोनी गया क्वाज सुईगु फुटी च्यागु डिग्री सेल्सियस दति चोन धासा थाउनिने ये सोनी गया क्वाज नि गुगु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु धुकुमा दु थाउ सुथे ये सोनी गले सुथे स्याङ्या त इजुया निगु मिनेटे लुया वो गु सूर्य शनि ल नेता इजुया गुगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार निना दिसा सुभा

दि रेडियो नेपाल इन आङ सिरिङ लामा शेर्पा ने सेरिकेकी साङ्गुर सेन्रोनाङ प्रतिनिधि सभाकी आरिङ सक्दुल अध्यादेश नासक तिरिकी थुलन्द थुलम

सु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिरी राङ्नी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभा ला तिनी ला चिसाङसे लोलो लोलो अध्यादेश कदे स्वीकृत लाभा मुला चिसाङसे सरकार से निभा चैत्री झारी लाभा सार्वजनिक खरिद निछा संशोधन अध्यादेश 2083 सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण सोमछा संशोधन अध्यादेश 2083 सहकारी गिक्षा संशोधन अध्यादेश 2083 लुई विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी तिलाई नेपाल एन्दा संशोधन लाभा अध्यादेश 2083 स्वीकृत लाभा हिन्ला चुडाङलासिन तिनीला चिसाङसे नोर विधेयक 2083 थिएन राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2083 थोरी विचार लातोजी विवाह प्रस्ताव काठुई लिचा सर्वसम्मतिसे पारित लाभा मुला काठुरी थोनबा ताम्री जवाब पिन्चिबान नोरब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसे युलबाङ न्याय छ्याम्ला उद्धार अर्थतन्त्र दा च्यासी बजेट ला कर कादे तोक लाभा मुला बिसी सुङबा मुला नोरब्लोन डाक्टर वाग्लेसे तुनबा धुइदा ज्याबा मनाङबा बिमा एनोन लिछा धोना नोर ठिम्दा ज्याबा शोभा सरकारला सेम हिनला बिसी सुङबा मुबा काठिरी पोकिनबा सांसद कादेसे सरकारला खर्च लाभा बङ लेना लाभारी संरचना गत सुधार तादोला बिसी सुङबा मुबा चुङाछा तिनीला चिसाङ तिबा लिछा विपक्षी दलला सांसद कादेसे युल ठिम ग्याम्नोन सेङबा मुलाकी खाजीबैनोन बङसे सेङबा मुला गोबारी आखाम्नी बिबान विरोध लाभा मुबा सुङबोन डोलप्रसाद अर्यालसे तिनीला चिसाङरिन विरोध लाभा लिछा विपक्षी सांसद कादेदा ताम थानबारी दुई पिन्स्युबा मुबा प्रतिनिधि सभाला चिसाङ दोषी असार चुई घिक बिहिबारला कुनु स्योला चुई घिक यामा चिबा गेखोर मुला राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङरी सांसद कादेसे जामे कोला थोरी ताबा सातपा थाबादा काबारी सुकुम बासी थेन सा आरेबा मिनिला व्यवस्थापन राङबा ताम्री सरकारला ध्यान छेङनाला सिउबा मुला चिसाङरी सांसद कादेसे जामे कोलाला इज्जत नोन निबा लासी सामाजिक सञ्जालडी आच्याबा तामकादे थान्बा थेन छिपा मिनिदा कोङबा भीमा कोङबा कारबाही लासी पिडिदा न्याय पिन्दोला बिसी सुङबा मुबा सांसद कादेसे छाउपडी राङबा आच्याबा रिम थिम्दा थुम्ना लाबारी बङ लातोला सुङबान स्थानीय थेन प्रदेश तहरी पिनबा सेवादा प्रभावकारी सोबारी तोबा बजेट फेदोला बिसी सुङबा मुबा राष्ट्रिय योजना आयोग से नोर्दिङ 2083-84 ला बजेट सेङबा ताम्री काठुई लाभा मुला काठुरी नोरब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसे दातेला सरकार से कागजरी बिमा एनोन तोक लाभा गे दुईरिन झिन्ना लाबारी माइबा मुला सुङबान दातेला मिनिसे गे झिन्ना लाबारी आखाम्बा हिन्साम ब्योन कादेदा इन्टर सिप्री थान्सी बिसाई गे लाबारी सरकार तयार मुला बिसी सुङबा मुला नोरब्लोन वाग्लेसे जेठ चुई ला कुनो सरकार से थान्बा बजेट साउन घिक्ला कुनो ग्याम्नोन सेङबारी ब्लोन खाङ कादेला लोन कादेदा सुङबा मुला रोङसा ब्लोन शिशिर खनालसे नेपाली चिया निर्यात्री माङबा समस्या थुम्ना लाबारी कुटनीतिक बङ लबान मुला बिसी सुङबा मुला ब्लोन खनालदा रूप ताबारी सिंहदरबारी मुबा रोङसा ब्लोन खाङ धोबा नेपाल उद्योग छोङ महासङ्घला चोहो अन्जान श्रेष्ठ गोबाङला टोलीसे नेपाली रोबा चिया भारतरी चुङबारी माङबा समस्यादा कुटनीतिक घ्याम थुम्ना लाबारी बङ लासी पिनबारी ब्लोन खनालदा मोइजेन लाबा मुबा ओजाधुरी रोङसा ब्लोन खनालसे नेपाली चिया निर्यात्री माङबा समस्या थुम्ना लाबारी सरकार से भारतीय पक्ष थेन ताम लबान मुला बिसी सुङबा मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाला गिक्छा युलबाङ ग्रेन ह्वाल रेङेन हेन्से कुला कुनु धोना भरतपुर लाबन मुला ग्रेन ह्वालदा गोर चुइब्रे लोलो लोलो उपसमिति से घे लाबन मुला ग्रेन ह्वालला ठोङसेङ भरतपुर महानगरपालिका चुइला जोङ प्रहरी घेजाङ चितवन घाँचाला गेस्ट हाउस राङगारी थेन बन्द सत्र उद्योग सङ्घ चितवन डी ताबा तयारी लाबा मुला बिसी रासोपाला मियो सदस्य राजन गौतम से सुङबा मुला ग्रेन ह्वालला ठोङसेङरी तोङ भ्लिचुई बिमा लानासे पो किन्बा मान्बा मुला बिसी रासोपा चितवनला चोहो मिनी यादव खनालसे सुङबा मुला ग्रेन ह्वाल ठोङसेङरी काइब्लोन थेन ग्रेन गोबोन बालेन्द्र शाह रासोपाला चोहो रवि लामी छाने छ्याम्ला गोबोन कादेसे लेङ्मो थान्स्युबा घेकोर मुला ग्रेन दल्ला गोबोन कादेथा नोन ग्रेन ह्वाल री डोनबोला
दोबारी निम्तो लाभामुला नेपाली काङ्ग्रेस लाचोहो गगन थापा नेकपा एमाले लाचोहो केपी ओली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लाथुदबोन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राप्पा लाचोहो राजेन्द्र लिङदेन श्रम संस्कृति पार्टी लाचोहो हर्क राई साङपाङ जसपा नेपाल लाचोहो उपेन्द्र यादव जनमत लाचोहो सिके राउथेन गाछाला काइब्लोन बाबुराम भट्टराई दा डोन्बो दोषी मानसाङ सानगिर पिनबारी निम्तो पुइबामुला सरकार से ताप्लेजुङला धार्मिक थुम मुकुम लुङ पाथी भरा री सोबारी माइबा केबुलकार से थोन्ना लाबा विवाद थुम्ना लाबारी गेदल सोबामुला काइब्लोन थेनब्लोन सेङझाङला गेजाङला लोन इस्तला तिलमाला निर्णय अनुसार काइब्लोन बालेन्द्र शाहला सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईला थुतबोन्डी मेन्दोनी सदस्य गेदल सोबा मुलाबिसी काइब्लोनला प्रेस थेन अनुसन्धान विज्ञ दिपा दहाल सेसुङ बामुला गेदल दा सुझाव पिनबारी चुई घाराला दुई पिनबामुला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड से कक्षा चुई निला रिजल्ट तेबा मुला तिनी स्योरी चिबा बोर्ड ला चिसाङ से रिजल्ट तेबा हिनला निबा बैशाख चुई भिला कुनु हेन्से निचुई निस्ला कुनु धोना किन्बा जाँचला रिजल्ट सोमची गा रारिन रिजल्ट तेबा मुला बिसी बोर्ड से पाङबा मुला एसियाली विकास बैंक एडीबी से नेपालला नगरपालिका री थुङबा क्युई थेन सरसफाई सुधार लाबारी करोड चुई गिक से लाख घाँची अमेरिकी डलरला सहुलियत छ्याई स्वीकृति लाबामुला एडीबी से एकीकृत थुङबा क्युई आपूर्ति थेन ढल व्यवस्थापन परियोजना ग्याम गोर चुई सोम जोङला लाख ब्रेसे तोङ घाँची बिमा लाना मिनिदा ज्याबा तासेदा मुला औद्योगिक थुम व्यवस्थापन लिमिटेड हेटौँडा गेजाङ से औद्योगिक थुम नाङरी सेङबा टाङ्गा आफावा उद्योगला विद्युत लाइन तिनी नोन थाबा मुला तिलमा गोरगाँचुई उद्योगला विद्युत थाबा गेजाङ से तिनी नोन टाङ्गा आफावा उद्योगला विद्युत थाबा हिनला गेजाङला सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारी से विद्युत लाइन थाबा गेला छ्याम टाङ्गा फाजी बिसाम दोषी लाइन थुइबा गेनोन ताबन मुला बिसी सुङबा मुबा हेटौँडा औद्योगिक थुम नाङरी मुबा जाजा ग्रेन लासी ग्यार्जा गिक्से गोर सोमचुई गिग उद्योग से टाङ्गा फावा आरे भिवन टाङ्गा आफावा मोकुन उद्योगला विद्युत लाइन थाबा बिसी पाङबा मुला नेपाल विद्युत प्राधिकरण से कञ्चनपुरला पुनर्वास नगरपालिका थुम्री पुनर्वास सब स्टेशन सोसी जिन्ना लासी सेङबा मुला सब स्टेशन सेङबा लिचा तोङ चुई ब्रे मिनिसे सेवा याङबा मुला यातायात व्यवस्था गेजाङ नेपालगञ्ज ग्याम प्रहरी से तिलमा मेन्दोनी डाक्टर लाछ्याम मेन्दो गाँदा चुङबा मुला जोङ प्रहरी गेजाङला प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीत सिंह राठौर से लाइसेन्स थेन लाइसेन्स नवीकरण लाबारी तोबा मेडिकल रिपोर्ट पिन्दोबारी तिलै ह्याम आरे बिसी प्रमाण पत्र पिनबासे थेनी कादेदा चुङबा हिनला बिसी पाङबा मुला जोङ प्रशासन गेजाङ काभ्रे पलाञ्चोक से चु नोर्दिङला जेठ धोना तोङ ब्रेसे डुचुई छार नागरिकता झारी लाबामुला चुधुरी तोङ निस चुई बिमा लाना जोङला मिनिसे युलबाङ परिचय पत्ररी निवेदन पिनबामुला गेजाङ से चु नोर्दिङला लाचुई घिकरी मेन्दो निचुई से आमाला मिनग्याम नागरिकता किन्बा मुला बिसी पाङबामुला स्यानसुबान मुभा सानग्युर झिन्जी फ्याफुल्ला

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासँग सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। सरकार संविधान संशोधनके बहसपत्र तयार करबा कार्यदलके अवधि थप करसँ सरकारी जमिन छानबिन सम्बन्धी आयोगके प्रतिवेदन कार्यान्वयन करऽ धरिके विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय कयलक अछि। सरकार संविधान संशोधन बहसपत्र तैयार करयवला कार्यदल 2082 कार्यविधि आबयवला 2083 साल अखार मसान धरिक लेल थप करबाक निर्णय कयलक अछि। एहिना कऽ सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन छानबीन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग रावल आयोग 2052 प्रतिवेदन कार्यान्वयन करबाक लेल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयके निर्देशन देबाक निर्णय भेल अछि। बैठकसँ सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेश कुमार धितालके लेखामान बोर्डके अध्यक्ष पदमे मनोनयन करबाक निर्णय कयलक अछि। दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आबद्ध मुलुक बीच निकासी होयवला समानके भन्सारमे पूर्व जानकारी प्राप्त करबाक सम्बन्धी समझदारी पत्रके सरकार स्वीकृत कयलक अछि। एहि दस्तावेजमे नेपालके दिशसँ हस्ताक्षर करबाक लेल भन्सार विभागके महानिर्देशक के अख्तियारी प्रदान कयल गेल। सरकारके प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्री सस्मित पोखरेल आइ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमे जानकारी देलनि। हुनक हिसाबे मध्य भोटेकोशी जल विद्युत आयोजनासँ उपयोग कयने वन क्षेत्रके जमीन बापत उपलब्ध कराबयवला सट्टा भरना जमीनके समय सीमा थप करबाक लेल बैठक स्वीकृति प्रदान कयलक अछि। नेपाली सेना दिस एक गोटे सहायक रथीके उपरथी दर्जामे बढ़ुआ करबाक निर्णय कयल गेल अछि। एहिके सङ्गे अवकाश होबयसँ पहिने एक गोटे महासेनानीके सहायक रथी आ एक गोटे सहायक रथीके उपरथी दर्जामे मानार्थ बढ़ुआ करबाक निर्णय सेहो मन्त्री परिषद कयलक अछि। प्रतिनिधि सभाके आजुक बैठकसँ विभिन्न अध्यादेश सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत कयलक अछि। बैठकमे सांसद खड़क बहादुर बुढा रखने सार्वजनिक खरीद दोसर संशोधन अध्यादेश 2083 स्वीकार कयल जाएके प्रस्ताव बैठकसँ बहुमतसँ अस्वीकृत कयलक अछि। अहिना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहके दिशसँ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुभिता गौतम सार्वजनिक खरीद दोसर संशोधन अध्यादेश 2083 स्वीकृत कयल जाए कहिके रखने प्रस्तावके बैठक बहुमतसँ स्वीकृत कयलक अछि। सांसद नीता घतानी सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तेसर संशोधन अध्यादेश 2083 अस्वीकार कयल जाए कहिके रखने प्रस्तावके बैठक सर्वसम्मतिसँ स्वीकृत कयलक अछि। एहि पश्चात अर्थमन्त्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तेसर संशोधन अध्यादेश 2083 स्वीकृत कयल जाए कहिके कयने प्रस्तावके सर्वसम्मतिसँ स्वीकृत कयलक अछि। सांसद आर एन राय सरकारी पहिल संशोधन अध्यादेश 2083 अस्वीकार कयल जाए कहिके रखने प्रस्तावके बहुमतसँ अस्वीकृत कयने छल। ओहि पश्चात भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल सहकारी पहिल संशोधन अध्यादेश 2083 स्वीकृत कयल जाए कहिके कयने प्रस्तावके बैठक सर्वसम्मतसँ स्वीकृत कयने छल। सांसद कृपाराम राणा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी किछु नेपाल ऐनके संशोधन करयवला अध्यादेश 2083 अस्वीकार कयल जाए कहिके रखने प्रस्ताव बैठक बहुमतसँ अस्वीकृत कयने छल। अहिना स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी किछु नेपाल ऐनके संशोधन करयवला अध्यादेश 2083 स्वीकृत कयल जाए कहिके प्रस्तुत कयने प्रस्ताव बैठक सर्वसम्मतिसँ स्वीकृत कयने छल। प्रतिनिधि सभाके दोसर बैठक अखार 11 गते दिनके 11 बजे बैसत। राष्ट्रसभाके आजुक बैठकसँ विभिन्न अध्यादेश सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत कयलक अछि। बैठकमे सांसद सञ्जना देवकोटा सहकारी पहिल संशोधन अध्यादेश 2083 अस्वीकार कयल जाए कहिके रखने प्रस्तावके बहुमतसँ अस्वीकृति कयने गेल छल। ओहि पश्चात भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल सहकारी पहिल संशोधन अध्यादेश 2083 स्वीकृत कयल जाए कहिके कयने प्रस्ताव बैठक बहुमतसँ स्वीकृत कयने छल। सांसद मीना सिंह रखाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी किछु नेपाल ऐनके संशोधन करयवला अध्यादेश 2083 अस्वीकार कयल जाए कहिके रखने प्रस्ताव बैठक बहुमतसँ स्वीकृत कयने छल। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी किछु नेपाल ऐनके संशोधन करयवला अध्यादेश 2083 स्वीकृत कयल जाए कहिके प्रस्तुत कयने प्रस्ताव बैठक बहुमतसँ स्वीकृत कयने छल। सांसद रंजीत कर्ण रखने सार्वजनिक खरीद दोसर संशोधन अध्यादेश 2083 अस्वीकार कयल जाए कहिके प्रस्ताव बैठक बहुमतसँ स्वीकृत कयने छल। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहके दिशसँ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुभिता गौतम सार्वजनिक खरीद दोसर संशोधन अध्यादेश 2083 स्वीकृत कयल जाए कहिके रखने प्रस्ताव बैठक
बहुमतसँग स्वीकृत गर्नेछ। सांसद रोशनी मेची सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तेसर संशोधन अध्यादेश 2083 अस्वीकार कार्यजाके राख्ने प्रस्तावके बैठक बहुमतसँग स्वीकृत कयने छल। ओहि पश्चात डाक्टर स्वर्णिम वागले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तेसर संशोधन अध्यादेश 2083 स्वीकृत कार्यजाके कयने प्रस्तावके बहुमतसँग स्वीकृत कयने छल। बैठकमे प्रधानमन्त्री शाहके दिशसँ कानून मन्त्री गौतम थारू आयोगके 2081-82 वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयने छलथि। राष्ट्रसभाके दोसर बैठक अखार 11 दिनके 1:15 बैसत। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चलचित्र क्षेत्र केवल मनोरंजन के माध्यम मात्र नहीं भ नागरिक में जागरण सामाजिक रूपांतरण आ राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत कराव वाला प्रभावकारी संयंत्र भेल बतौलने। आई आयोजित एक कार्यक्रम में अपन धारणा रखत ओ मौलिक भाषा संस्कृति आ परंपरा के जगेरना करबाक लेल चलचित्र क्षेत्र के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक चर्च कलन। राष्ट्रपति पौडेल नेपाल के हिमाल पहाड़ तराई के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सामाजिक जीवन के विश्व मंच में चिन्हावत चलचित्र सेतु के काज कने बतौलन। बदल रहल परिवेश हिसाबे नीतिगत तथा कानूनी सुधार के आवश्यकता रहल बतौबित राष्ट्रपति चलचित्र उद्योग के नया ऊंचाई में पहुँचावत सरकार आवश्यक सुविधा सहूलियत उपलब्ध कराते पर जोर दिलन। ओ नेपाली चलचित्र देश के अर्थतंत्र में सेहो योगदान पहुँचा रहल चर्च करत अ क्षेत्र के थप सुदृढ़ बनावत सरकार वाला के ध्यान जेबाक चाही बतौलन। कलाकार आ प्राविधिक सबके अ क्षेत्र में अपन भविष्य सुरक्षित आत्मसम्मानित महसूस करबाक वातावरण निर्माण हेबाक चाही हुनकर कहब छलन। नेपाली मौलिकता के संदर्भ में चर्चा करत राष्ट्रपति पौडेल गाम ठाम आ कोना कप्चा में कथा के सूक्ष्म ढंग से पर्दा में उतार सकला पर नेपाली चलचित्र अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आ विश्व बाजार में विशिष्ट पहचान बनाए सकत से विश्वास व्यक्त कलन। एक लेल चलचित्र कर्मी के अध्ययन अनुसंधान आ सृजनात्मक पक्ष में केंद्रित रहबाक लेल उ सुझाव दिलन। अहिना राष्ट्रपति चलचित्र के पर्दा में महिला बाल बालिका दलित आदिवासी जनजाति मधेसी अपांग भेल व्यक्ति आ भूमि भूगोल के समुदाय के प्रतिनिधित्व सम्मानजनक यथार्थपरक हेबाक चाही पर जोर दिलन। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा नया चलचित्र ऐन के समय सापेक्ष व्यवहारिक आ चलचित्र कर्मी सबके इच्छा हिसाबे निर्माण करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलने। आई आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री तिमिल सिन्हा चलचित्र क्षेत्र के विकासक लेल मौजूदा ऐन में सुधार आवश्यक रहल बतौलन। संचार मंत्री तिमिल सिन्हा चलचित्र कोनो राष्ट्र के आत्मा आ समाज के मनोदशा प्रतिबिंबित करबाक उल्लेख कलन। चलचित्र क्षेत्र में समस्या चुनौती अपेक्षा प्रति सरकार अत्यंत गंभीर रहल स्पष्ट करत ओ क्षेत्र के सुधारक लेल सरकार वाला संग बृहत्तर छलफल आगू बढ़ल लेल स्वयं तैयार रहल बतौलन। मंत्री तिमिल सिन्हा नया चलचित्र ऐन सरकार के सहजता के लेल नहीं भ समग्र चलचित्र क्षेत्र के हित आवश्यकता के लेल आन लागल प्रश्न कलन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव शारीरिक तथा मानसिक रूप में स्वस्थ रहबाक लेल निरंतर योग अभ्यास जरूरी रहल बतौलने। मुख्यमंत्री यादव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर आई जनकपुर धाम में भारत सरकार के बीरगंज स्थित महाबाड़जी दूतावास के आयोजना में सम्पन्न भेल विशेष योग कार्यक्रम के उद्घाटन करत ई बात बतौलने। ओ अखन के समय में विभिन्न कारण से नहीं सर वाला रोग के प्रकोप बढ़त गेल आ व्यक्ति व्यस्त भेल कारणे अनेकन स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित होवय पड़ल ऐसा मुक्ति के लिए योग करबाक लेल जरूरी रहल बतौलन। मध्य प्रदेश के सभामुख रामाशीष यादव निरंतर योग से व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ित है जाहि कारण सबके योग करबाक लेल सुझाव दिलन। वो मध्य प्रदेश में बीतल किछ वर्ष एम्हर रोग प्रति के आकर्षण बढ़ल बतौबित कतेको दीर्घ रोग के निदान योग भेल अनुसंधान से प्रमाणित कह चुकल ओ बतौलन। भारत सरकार के बीरगंज स्थित महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत देवी सहाय मीना भारत सरकार के प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में 21 जून के विश्वव्यापी रूप में योग दिवस मनेबा काज भ रहल बतौने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिणी लेबनान के नवाहती जिला के आवासीय क्षेत्र में आई भेल इजरायली हवाई आक्रमण में कमती में 16 के मृत्यु भेल लेबनान के राष्ट्रीय समाचार एजेंसी जनौलक। हारूफ सड़की आ कफर शहर के लक्षित का आक्रमण कायल गेल जनाल गेल त कफर रेमिन कफर तेबिनिट आ अन्य नजदीक इलाका में भेल आक्रमण में हाथाहाथ तथा घायल आ बेपत्ता बनाल गेल रिपोर्ट कायल गेल। इजरायली लड़ाकू विमान नवतिया शहर कफर तेबिनिट आ नवातिया अल फाका आ रिहान हाइट्स के लक्षित का हवाई आक्रमण के श्रृंखला शुरू कने जनाल गेल। इजरायली विमान पवच क्षेत्र शहर के विश्वविद्यालय लगाए जिला विभिन्न स्थान में आक्रमण कला से प्रारंभिक रिपोर्ट के हिसाबे 8 के मृत्यु भेल जनाल गेल। दोसर आक्रमण से
कारकिया आ डुरि शहर बीच के क्षेत्र के लक्षित क एकटा घर ध्वस्त कयला सँ चार गोटा के मृत्यु भेल जनाल गेल अछि। कफर में भेल इजरायली हवाई आक्रमण में तीन गोटा के जान गेल जनाल गेल अछि। आब खेल समाचार। फीफा विश्वकप फुटबल 2026 प्रतियोगिता अंतर्गत समूह चरण के दोसर राउंड के पहुल खेल में चेक रिपब्लिक आ दक्षिण अफ्रीका बीच के खेल बराबरी में समाप्त भेल अछि। अमेरिका के एटलांट स्टेडियम में भेल खेल में समूह एक खेल में अग्रता जोगावर नहीं सकला सा चेक रिपब्लिक दक्षिण अफ्रीका संग एक एक गोल के बराबरी में रोकायल। खेल के छठा मिनट में चेक रिपब्लिक के मिचेल सादिलेक गोल कर टोली के पहल अग्रता दियौन छे। पश्चात खेल के 83 मिनट में पेनाल्टी मार्फत दक्षिण कोरिया एक गोल घुरौलक। खेल के 83 मिनट में डीप बॉक्स भीतर चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हाथ से बॉल छूलाक बाद दक्षिण अफ्रीका पेनाल्टी पौने छल। वही अवसर के सदुपयोग करे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी तेबोहो मोकोना गोल कलन। आई हो वाला समूह ए के दोसर खेल मैक्सिको आ दक्षिण कोरिया बीच हाथ। ये खेल नेपाली समय हिसाबे रात के 12:45 से शुरू हाथ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमाडौँ जिल्ला अदालत ने राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामा छाने के विरुद्ध संगठित अपराध संबंधी अभियोग को वापस लेने की दी अनुमति। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम हुआ सार्वजनिक। पिछले 10 वर्षों में वितरित कृषि तथा पशुपंछी अनुदानों की जांच के लिए गठित हुआ कार्यदल। और इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर बन गई है सहमति। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने सार्वजनिक खरीद, संपत्ति शुद्धिकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी 4 अध्यादेशों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही आर्थिक विधेयक 2083 और राष्ट्र ऋण उठाने संबंधी विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा कि बजट सामाजिक न्याय सहित उदार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार अल्पकालीन लोकप्रियता के बजाय दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि और पूर्वाधार विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सांसदों ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मौलिक अधिकारों से जुड़े क्षेत्रों पर लगाए गए कर वापस लेने, स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने और विदेशी ऋण को केवल उत्पादन मूलक क्षेत्रों में खर्च करने की मांग की। बैठक के प्रारंभ में विपक्षी सांसदों ने सरकार की कार्यशैली, नेपाल भारत सीमा संबंधी विषय और सुशासन के मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के संसदीय दल के नेता ज्ञानेंद्र बहादुर शाही ने विद्युतीय सवारी साधनों में कर छली और बजट सूचना रिसाव प्रकरण की संसदीय जांच की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 11 गते सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने विभिन्न अध्यादेशों को बहुमत से स्वीकृति प्रदान की। बैठक में गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने सिंधुली पुलिस की हिरासत में श्रीकृष्ण विश्वकर्मा की मृत्यु संबंधी विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि जांच प्रतिवेदन में प्रहरी द्वारा मारपीट किए जाने का प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने कहा यदि नए तथ्य सामने आते हैं तो सरकार आवश्यक जानकारी देगी। वहीं भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा कि सरकार भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान और किसानों के मोहियानी अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सांसदों ने महिला हिंसा, भूमिहीन नागरिकों के व्यवस्थापन और सामाजिक संजाल में महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम सार्वजनिक कर दिया है। बोर्ड के अनुसार नियमित परीक्षा में शामिल 3,32,241 विद्यार्थियों में से 2,31,770 विद्यार्थियों ने सभी विषयों में ग्रेड प्राप्त किया है। इसी प्रकार आंशिक वाले 85,929 विद्यार्थियों में से 36,420 विद्यार्थियों ने ग्रेड हासिल किया है। कुल 4,18,170 परीक्षार्थियों में से 2,68,190 विद्यार्थियों ने सभी विषयों में ग्रेड प्राप्त किया है। परिणाम के अनुसार नियमित वाले 69.75%, आंशिक वाले 42.38% और कुल 64.13% विद्यार्थी सफल रहे हैं। बोर्ड ने बताया कि गत वैशाख 14 से 27 गते तक आयोजित परीक्षा का परिणाम परीक्षा संपन्न होने के 35 दिन के भीतर सार्वजनिक किया गया है। मंत्रिपरिषद की आज की बैठक ने डॉ. गोपाल प्रसाद भट्ट को नेपाल धितोपत्र बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नेपाल विशेष सेवा आयन संबंधी विधेयक, सहकारी कानून संशोधन और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को संघीय संसद में पेश करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। काठमांडू जिला अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामा छाने के विरुद्ध संगठित अपराध संबंधी अभियोग हटाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने ठगी संबंधी अभियोग यथावत रखते हुए संगठित अपराध संबंधी आरोप कायम न रहने का आदेश दिया है। जिला सरकारी वकील कार्यालय ने अभियोग पत्र संशोधन का निवेदन दायर किया था। इससे पहले कास्की और परसा की अदालतें भी संगठित अपराध संबंधी अभियोग हटाने की अनुमति दे चुकी हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G।

0: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी की पहल पर पिछले एक दशक में वितरित कृषि तथा पशुपालन अनुदानों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया गया है। मंत्रालय के अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73 से अब तक प्रदान किए गए कृषि एवं पशुपालन अनुदानों की समीक्षा और जांच के लिए सह सचिव बद्री प्रसाद दाहाल के संयोजकत्व में कार्यदल बनाया गया है। कार्यदल को 6 महीने के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कार्यदल पुराने प्रतिवेदनों की पुनः समीक्षा करेगा, अनुदान दुरुपयोग के मामलों की पहचान करेगा और सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देगा। साथ ही प्रभावकारी प्रणालियों का अध्ययन कर अच्छे अभ्यासों के आधार पर सिफारिशें भी प्रस्तुत करेगा। सरकार हर साल कृषि उत्पादन वृद्धि और व्यावसायिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न अनुदान कार्यक्रम संचालित करती रहती है। हालांकि लंबे समय से ये आरोप लगता रहा है कि अनुदान की राशि वास्तविक और सीमांत किसानों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सकी और निगरानी व्यवस्था कमजोर रही। मंत्रालय ने कार्यदल को नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए अनुदान वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावकारी और जवाबदेह बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा है। सरकार ने तापरे जुंग के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल मुक्कुमलुंग पाथीभरा में प्रस्तावित केबल कार परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के समाधान के लिए 7 सदस्यों का कार्यदल गठित किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव स्तरीय निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के सामाजिक विकास विशेषज्ञ विश्व राय के संयोजकत्व में कार्यदल बनाया गया है। कार्यदल को केबल कार निर्माण से जुड़े विवादों और समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए 15 दिनों के भीतर सुझाव प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया है। कार्यदल में सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इसमें पूर्वाधार विकास मंत्रालय के वरिष्ठ डिविजनल इंजीनियर, केबल कार निर्माण का विरोध कर रहे पक्ष के प्रतिनिधि, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति के प्रतिनिधि, निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय के उप सचिव तथा प्रधानमंत्री सचिवालय के सह सचिव को सदस्य बनाया गया है। सरकार का कहना है कि कार्यदल सभी सरोकार वाले पक्षों से संवाद कर विवाद का सहमति आधारित समाधान खोजने और परियोजना संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव देगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा है कि चलचित्र केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि देश की भाषा, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित और प्रचारित करने का प्रभावी साधन है। चलचित्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय तथा विशेष चलचित्र पुरस्कार समारोह में वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ को दीर्घ साधना सम्मान प्रदान किया गया। मौके पर उनको स्वेटर उत्कृष्ट चलचित्र घोषित हुआ। नवीन चौहान उत्कृष्ट निर्देशक, नीर शाह उत्कृष्ट अभिनेता और मीरुना मगर उत्कृष्ट अभिनेत्री के रूप में सम्मानित हुए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बीबीसी ने ये जानकारी दी है। यह समझौता आज स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे लागू हो गया। इसराइली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने एक बयान में कहा, इसराइल युद्ध विराम की स्थिति में है, अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल लड़ाई जारी रखने के लिए भी तैयार है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रात भर इसराइली हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसराइल की सेना का कहना है कि उसके 4 सैनिक भी मारे गए हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने इससे पहले कहा था कि उसने ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े 80 ठिकानों को निशाना बनाया। IDF ने दावा किया कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के दर्जनों सदस्य मारे गए। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और ईरान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को रोकने की अपील भी शामिल थी। गुरुवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने लेबनान में हमलों को लेकर इसराइल को झिड़का भी था। उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को लेकर तीखी बातें कर चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सभापति रवि लामिछानेकै विरुद्ध संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोगको वापस लिने कि दिई अनुमति, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा 12 परीक्षा परिणाम हुआ सार्वजनिक, पिछले 10 वर्षों में वितरित कृषि तथा पशुपंछी अनुदानों की जांच के लिए गठित हुआ कार्यदल और इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर बन गई है सहमति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही मजाले चलाउने
4: *14#डायल गर्नुहोस्।
0: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल नयाँ नेपालको समावेशी आवाज राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार
1: I'm sorry नमी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे प्लीज माफ कर दो
2: इट्स ओवर अब सब कुछ खत्म हो चुका है शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती

0: ए नानी हो, कता जानी हो?
1: अनि देखेनौ र डोको नाम्रो बोकेर घाँस काट्न जान लाग्यो?
0: ए हो त नि गाँठे ममोरनी तत्तेरी।